वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

अर्जुन देव जी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभा माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव उन्हां नूं किसी चीज दे नाल कोई मतलब नहीं सी। वड्डा भरा पृथ्वी चंद हर वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल ईरखा करिया करदा सी। एक दिन दा जिक्र है गुरु अर्जन देव जी महाराज दे तर्मस पत्नी माता गंगा जी जिन्हां ने वेड़े दे विच कीमती कपड़े कीमती समान रखे है धुप लवाउण वास्ते कपड़िया नूं पृथ्वी चंद जी दी घरवाली करम कौर उसने जद छत ते चढ़ के माता गंगा जी दे घर वल देखिया रेशमी कपड़े गहने कीमती समान ते सड़ पल के कोले हो गई। करम कौर ए सारा कुछ देख के बर्दाश्त ना कर सकी मंजी ते आके लम्मे पै गई। पृथ्वी चंद बाहरों आए घरवाली नूं कहन लगे

अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बनदे और ये सारा कुछ तुहानू मिलना सी। तुसी पिता दी आज्ञा नहीं मन्नी, सेवा सिमरन नहीं कीता ते ए गुरगद्दी तुहानू नहीं मिली, पर तुहाडा छोटा भरा गुरु अर्जन साहब जिन्हां ने सेवा सिमरन कीता, हुक्म मन्या ते गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बन गए। पृथ्वी चंद करम कौर दी गल सुन के हसे। करम कौर पृथ्वी चंद नूं अपने घर दी छत ते लै गए और कहन लगे, ऐ देखो तुहाडे छोटे भरा गुरु अर्जुन साहब दा घर किन्ना कीमती समान होया, काश ये सब कुछ साडे कोल हुंदा। पृथ्वी चंद हस पए और हस के उची सारी

ना कोई धी ना कोई पुत्र ते जिदे घर धी पुत्र ना होवे लोग उसनू औतर नखत्र कहंदे ने। सत्संगत ए जड़े लफज बाबा पृथ्वी चंद ने वरते ओ लफज असी नहीं बोल सकते पर अगर बोलिए ना इतिहास पूरा नहीं हुंदा। पृथ्वी चंद कहन लगा करम कौरे मेरे छोटे भरा दे घर ना कोई धी ना पुत्र इन्हां ते दुनिया तू औतरिया चलिया जाना ए सारा कुछ साडे पुत्र मेहरबान ने सामने। पृथ्वी चंद ने यह गल उची सारी सुनाण वास्ते कही सी ए गल नौकराणी ने सुनी नौकराणी भजी भजी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी धर्मस पत्नी माता गंगा जी कोल गई और चरना ते सिर रख के रोन लग पे। माता गंगा जी कहन लगे नौकराणी नू तू रोनी क्यों है। नौकराणी ने अखां पूंजदिया होया आखिया माता जी मेरी जवान सड़ जाए केड़ी मोह नाल केड़ी जवान नाल ओ गल कहां जेड़ी गल पृथ्वी चंद ने कही। माता गंगा जी कहन लगे तू रो ना मैनू दस पृथ्वी चंद ने की किया। नौकराणी ने रोंदिया आखिया माता जी पृथ्वी चंद ने कहा कि गुरु अर्जुन साहब जिन्हां दे घर ना कोई धी ना पुत्र इन्हां दुनिया तू औतरिया चलिया जाना। अज माता गंगा जी नूं पहली वारी महसूस होया कि मेरे घर कोई धी पुत्र नहीं। कुछ समय बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज महलां विच आए। माता गंगा जी ने हाथ जोड़ के बेनती की थी, महाराज सारी दुनिया नूं दाता देंदे हो पर मेरी झोली खाली अज वड्डे प्राणे तां ना मारे है अगर मेरे घर भी पुत्र

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरुवर जी साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु क्या नू किधरू पाजड़ा पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना कीती। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जुन साहब नू कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं कीती, सगा कहा कि गुरुआं नू किधरू भाजना पै गईआं, गुरु के महल नू किधरू भाजना पै गईआं। ता गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे, गंगा जदों किसे को

बाबा बुड्ढा जी, आज आप अपनी जगह तो उठ के अगा हुए और पाज के माता गंगा जी दे सिर तो

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया

मोरे हृदय बसो गोपाल। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भाई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचो श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा है कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा है तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते इस कीट नू कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए जे तुठे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तां कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन ओ चंगे नहीं लगदे, जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहंदियां हे कलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदियां ने कि मेरा दिल विशे विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके हुए दिल नूं प्रेम ला मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहा, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे घर होवे बाहर होवे दुख विच होवे सुख विच होवे हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे।
दीदाए अंबरा लज्जते दीदार बख्श, छीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना दे। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा। श्वासां दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहिगुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है, ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो। आपने क्या कुछ मंग, मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई, होर की मंगदा है। ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे। क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं, ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है, जलदा रहिंदा है, जिस हिरदे विच साई दे मिलन दा प्यार नहीं है। उच्चारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम। भाई साहब कहंदे ने हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, जे प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इना नू जीभा ला दियो। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हुंदे हन। ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, क्योंकि असी कलयुगी जीव हां, ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तो वध तेरे गुण गावां। इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीभा ला दे, ते फिर एनिया जीभा नाल मैं की करां। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम, ता बिगोयद विश्व हकरा दम बादम। दम बादम मैं तेरे गुण गावां, ते की मंगा मैं, ए मंगा तेरे कोलों के रस रस

आप केस सुखा रहे हो, अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन, ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान वी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां, मान में आरे मताबे गमजे मई गाने यू। मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा, मान में आरे मताबे गमजे मई गाने यू, गमजे मई गाने यू। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो, जिथे मेरी नजर जा टिकी है। तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन, बलिहार जांदे हन, उना दा ए लोक भी सुखी होंदा, परलोक भी सुहेला होंदा। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां, मान में आरे मताबे गमजे मै गाने ऊ, यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए भूमन में भूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साड़ी सांझ बन जावे, साड़ी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रहे।

पर पिता गुरु रामदास ने ना तो कोई सुनिया भेजिया ना ही वापस बुलाया ना कोई चिट्ठी पाई मन तड़फद अगे ता एक मिनट भी पिता गुरु तू दूर नहीं सन रहंदे पर हुण ता किन्ने दिन बीत गए कोठे ते खलोते ने ओ राह पे तकदे ने।

पर रस्ता खाली आकाश ते बदल छाए ने ठंडी ठंडी हवा वग रही बिजली चमक रही मन

लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही उथे तेरी वही कड्डी जाएगी तेरे लिखे जो तू लिखे तू आप लिखे किसे होर ने नहीं लिखे इस वास्ते हुण मनुछा जीवन है नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै नहीं तां साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं।

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचारिया है भगत जी ने। उपर सिरे लेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी का।

की सतह है। एडी गूढ़ी नींद आई है, ये एक मेरी पासा भी नहीं पा। निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत जिता है, पर उसको कोई ना कोई रोग लगा ही। कोई उसको चला कहेंगे, कोई दीवाना कहेंगे, कोई बावला कहेंगे। मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे हैं, पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल। होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते, पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए हैं, प्रसाद नहीं छके, पता नहीं कीड़ा रोग। अंदर जाके सोता है, तीन दिन तू मेरा लाल भोजन पाया है। जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं छके, ममता की मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च बुरकी नहीं पाई। जिस मां का पुत भुखा सो गया, उस मां नू नींद नहीं दी। पुत सो गया है, मां जाके उठा दी, काका भुखा क्यों सो गया? एक बुरकी तो पहुंच पाए, मां दी आंदरा ठर जाए। बच्चा रज के प्रसाद छक लवे, मां पहले रज। ये मां का प्यार, माता प्रीत करे पुत। माता तृप्त है इना ख्याल, इन्हों विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नू पुत्र ही सुन। गुरु नानक एक पर वेखण वाली वखो वक्त, तृप्ता ने जाने सुत, कालू ने जाने पुत, लालू भतीजा जाने मूले जाने ए जवाई, चंदो रानी जाने सरबंधी, जय राम साला जाने हैं, पर बेबे नानकी ने जाने हैं, रब रूप मेरो भाई। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर, पराए बुलार को प्रतीत भली आई है। श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप, ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक को, जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी, जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली, उन्हां ने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई हटी। भावना सब तो वड्डी चीज, जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया, उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जानते हृदय विश्वास, प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मिल गया। विश्वास ही वड्डी, विश्वास ही सब तो वड्डी। असी कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मत्था भी टेक, पर मत्था टेक के भी
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਬਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गण गुरबाणी गाव पाए सुख सहज आनंद गणा तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख।